योद्धा सीमा सीजी ब्रांड तथा सीजी मेरिडिया का होम अप्लायंसेस और होम एंटरटेनमेंट का सामान किंदा

0: इस समय सूचक का साथ मा
1: दक्षिण कोरिया मा पढ़ाई रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केंद्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0556 5359 53 98 550 77 061 98 550 77 053
2: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक बाट मेडिकल चेकअप डायग्नोसिस ल्याब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पाञ्जली हॉस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 चितवन फोन 0556 4940 4390 580 98 550 26 440
3: It's 7 o'clock. अहिले 7 बजेको छ।

0: जनता जान्न चाहन्छ।
1: टाइटल स्पोन्सर
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक सपोर्टेड बाई
3: गुणस्तरीय प्लम्बिङको पर्पर्द नाम मार्बल
4: टीका रिजोर्ट स्विट्स एन्ड स्पा पोखरा
5: स्मार्ट प्लम्बरको ट्रस्टेड चोइस टेन प्लास्ट नलगाए फरक पर्छ
6: क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो

नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिना पंजीकरण के चलने वाले संघ के तथा कथित आदर्शों पर चलने वाली पार्टी में पार्टी की जगह सेल का रोल इतना बड़ा हो गया है कि इसी की

0: चर्चा ज्यादा हो रही है कि बीजेपी में सोशल मीडिया का नया चीफ कौन बना है, क्या कर लेगा। देखने में यह एक साधारण बदलाव लग सकता है, लेकिन जिस डिजिटल स्पेस पर बीजेपी और मोदी सरकार राज करती रही है, किसी भी पोस्ट को कहीं से भी उड़वा देती है, उस डिजिटल स्पेस पर बीजेपी की बड़ी हार हुई है। बीजेपी की इस डिजिटल डिफीट को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसी से जुड़ा हुआ है सोशल मीडिया टीम में बदलाव। क्या बीजेपी नई टीम के दम पर इस डिजिटल पराजय को फिर से विजय में बदल पाएगी? 2014 से लेकर 24 तक सोशल मीडिया पर बीजेपी का एक छत्र राज रहा। 24 के लोकसभा चुनाव में थोड़ा कमजोर हुआ, मगर जुलाई 2026 के
1: मानिस अधिकार का साथ जन्मिन्छन्, बजार में बिक्री का लागि होइन, लोभ र प्रलोभन में नपरौं, असुरक्षित बसाई सराई नगरौं, सचेत बनौं, मानव तस्कर को जाल बाट बचौं, यौन शोषण, बाल विवाह, बाध्यकारी काम र दासत्व नियन्त्रण गरी महिला र बाल बालिका को सुरक्षा।

0: इस समय सूचक का साथ में
1: दक्षिण कोरिया में पढ़ाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0556 5563 98 5577061 र 98 5577 053
2: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक मेडिकल चेकअप डायग्नोसिस लैब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पांजलि हॉस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 चितवन फोन 0556 4934 4493 580 र 98 5576 2640
3: It's 10 o'clock. अहिले 10 बजे को छ।
4: यो नेपाली रेडियो नेटवर्क।
5: रेडियो एन आर्यन 99.1 समय को
6: स्वदेश एफएम 93.2 मेगाहर्ज
5: बज्यो।

0: समय सूचक का साथ में
1: दक्षिण कोरिया में पढ़ाई रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0956 53 59 98 55 77 0 61 98 55 77 0 53
2: चौबीस घंटा इमरजेंसी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक मेडिकल चेकअप डायग्नोसिस लैब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पांजलि हॉस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 चितवन फोन 0 56 4 93 440 4 93 580 98 55 26 440
3: It's 11 o'clock. अहिले 11 बजेको छ।

0: इस टाइम चेक
1: इस समय सूचक का साथ मा
2: दक्षिण कोरिया मा पढ़ाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0556 5569 53 98550 77061 र 98550 77053
3: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक बाट मेडिकल चेकअप डायग्नोसिस ल्याब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पाञ्जली हॉस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 स्थित वन फोन 0556 93 440 493 580 र 98550 26 440
0: It's 12 o'clock. अहिले 12 बजेको छ।

दक्षिण कोरिया में पढ़ाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0956 5359

0: नेपालीपन को आभास नेपाली मन को आवाज
1: सुन हिउँ चुली पहाड पहरा सुन भीर पागल एक बेसी सारा सुन
0: स्वदेश एफएम 93.2 मेगाहर्ज

0: समय सूचक का साथ मा
1: दक्षिण कोरिया मा पढाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0656 5369 53 98 5570 7061 र 98 5570 7053
2: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक बाट मेडिकल चेकअप डायग्नोसिस ल्याब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पाञ्जली हॉस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 चितवन फोन 0656 4934 4493 580 र 98 5570 2640
3: It's 6 o'clock. अहिले 6 बजेको छ।

दसैंमा सीजी ब्रांड तथा सीजी मेरिडिया का होम अप्लायंसेस र होम एंटरटेनमेंट का सामान किन्दा 1,02,000 रुपया सम्मको बचत। वाशिंग मशीन मा 6 केजी, टॉप लोड वाशिंग मशीन मा 4 केजी, सेमी ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन मा 2 केजी सर्फ एक्सेल, माइक्रोवेव मा कुकिंग किट र एसी मा निशुल्क जडान, साथै 0% ब्याज मा सजिलो किस्ता। सीजी भरोसा नेपाली को उत्सव दसैं तिहार को एक्सपीरियंस लाइफ विथ सीजी।

0: दशैंमा सीजी ब्रांड तथा सीजी मेरिडिया का होम अप्लायंसेस र होम एंटरटेनमेंट का सामान किन्दा 1,02,000 रुपया सम्म को बचत। वॉशिंग मशीन में 6 केजी, टॉप लोड वॉशिंग मशीन में 4 केजी, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में 2 केजी सर्फ एक्सेल, माइक्रोवेव में कुकिंग किट र एसी में निःशुल्क जड़ा, साथ ही 0% ब्याज में सजिलो किस्ता। सीजी भरोसा नेपाली को उत्सव दशैं तिहार को एक्सपीरियंस लाइफ विथ सीजी।
1: सपना तपाईको साथ हाम्रो नेपाल बैंक सवारी कर्जा नेपाल बैंक को बबाल फेस्टिभ अफर सेवा शुल्क मात्र 0.5% रु 3,00,000 सम्मको निशुल्क लाइफटाइम क्रेडिट कार्ड सुविधा कर्जा अवधि 5 वा 7 वर्ष सम्म सरल प्रक्रिया तथा छिटो स्वीकृति सम्पूर्ण शाखाबाट कर्जा प्रवाह हुने मात्र 4.90% सर्वाधिक न्यून वार्षिक ब्याज दरमा सातै दिन 24 घण्टा 01-597-1222 मा कल गर्नुहुन वा नजिकको नेपाल बैंकको शाखामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।
2: समय सँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड नेपालको पहिलो बैंक।

0: 92.2 MHz स्वदेश टाइम चेक इस समय सूचक का साथ में
1: दक्षिण कोरिया में पढ़ाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0656 53 59 98 550 77 061 र 98 550 77 053
2: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक बाट मेडिकल चेकअप डायग्नोसिस ल्याब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पांजलि हॉस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 चितवन फोन 0656 93 440 493 580 र 98 550 26 440
0: It's 5 o'clock अहिले 5 बजेको छ